कुछ अलोप हो रही हैं तो ना, पंजाबी तो ना, कुछ हिंदी तो ना। पेश करने निमाने की कोशिश करेगा, दास कितों तक कामयाब होया है, तू दास दी हौसला अफजाई करनी।